संत चोखामेळा की भक्ति रचना आप सुन रहे थे उदयन काळे के स्वर में। कार्यक्रम में अब हम सुनाने जा रहे हैं संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना, जिसे गाया है मालती पांडे ने।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था मालती पांडे ने। कार्यक्रम में आप सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी ने गाई हुई एक भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी ने गाई हुई इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त करते हैं।
1: भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे थे रागम 24/7 DTH चैनल पर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग ललित में सितार वादन. आज के कलाकार हैं दीपांकर दत्तो. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रुद्र नारायण कल्याणी. तो ये सुनते हैं राग ललित में सितार वादन, कलाकार दीपांकर दत्तो.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ सितार रिसाइटल इन राग ललित. आवर आर्टिस्ट दिस मॉर्निंग दीपांकर दत्ता. Accompanying on the tabla, Rudra Narayan Kalyani. Now, listen to a sitar recital in Rag Lalit by your artist Dipankar Dutta.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग ललित में सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे दीपांकर दत्तो। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रुद्र नारायण कल्याणी। ये है रागम 24 घंटे 7 दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्र।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं तीन ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं देवाशीष अधिकारी। तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल में तबला वादन, कलाकार सत्यव्रत चट्टोपाध्याय।
1: You are listening to a sitar recital in Rag Lalit by our artist this morning, Dipankar Datta, accompanying on the tabla, Rudra Narayan Kalyani. This is Ragam, 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, now listen to a tabla recital in Teen Tal. Our next artist, Satyabrata Chatterjee, accompanying on the harmonium, Devashish Adhikari. Now, listen to a tabla recital in Teen Tal by our artist Satyabrata Chatterjee.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप 3 ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सत्यव्रत चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे देवाशीष अधिकारी। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a tabla recital in Teen Taal by our artist Satyabrata Chatterjee, accompanying on the harmonium Devashish Adhikari. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर का ध्रुपद गायन. प्रस्तुत है राग तोड़ी चौथा.

में निबद्ध ख्याल के बोल है तोड़ी रागनी आलाप गावत, उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे हैं माणिक मुंडे। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट ध्रुपद रिसाइटल बाय उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर। ही प्रेजेंट्स ध्रुपद इन राग तोड़ी सेट टू चौताल, बोल तोड़ी रागनी आलाप गावत। He is accompanied on pakhwaj by Manik Munde.

ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। ये था राग तोड़ी। अपना ध्रुपद गायन जारी रखते हुए उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर और प्रस्तुत करते हैं राग मधमात सारंग। शूल ताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल है तुम रब तुम साहेब। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दैट वॉज राग तोड़ी। In continuation of his Dhrupad recital, Ustad Jia Fariuddin Dagar now present Rag Madhmat Sarang. Dhrupad said to Shul Tal, Bol, Tum Rab Tum Saheb. He is accompanied on Pakhwaj by Manik Munde.

ये था राग मधमाद सारंग। आप सुन रहे थे उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर का ध्रुपद गायन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे माणिक मुंडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। यू आर लिसनिंग टू ध्रुपद रिसाइटल बाय उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर। ही वॉज अकंपनीड ऑन पखवाज बाय माणिक मुंडे। This was a contribution by All India Radio, Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH in Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित का गाया राग भोपाली. मध्य लय खल छप ताल में निबद्ध है और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present for you a vocal recital by Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit. He first presents Rag Bhopali, in which you will hear a composition set to Madhyalay Jhaptal, followed by a composition set to Dhrut Teental. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Ghanshyam Sisodia.

0: अभी आप पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित का गाया राहुपाली सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने। और लीजिए अब सुनिए राग शंकरा। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने।
1: दैट वॉज राग भूपाली कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल। Pandit Lakshman Krishna Rao Pandit next presents Raag Shankara, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Tilwara Taal, followed by another composition set to Dhrut Teen Taal. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the sarangi by Ghanshyam Sisodia.

0: अभी आप पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित का गाया राग शंकरा सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर घनश्याम सिसोदिया ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: इट वॉज राग शंकरा एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक एंड ऑन द सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये रागम DTH चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। आइए सुने पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी वादन। प्रस्तुत है राग पूरिया, विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
2: रागम 24/7 DTH Anytime Indian Music. Listen to Hindustani Classical Flute Recital by Pandit Nityanand Haldipur. Presenting Rag Puriya, Vilambit Gat set to Ektal and Drut Gat set to Teental.

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग पूरिया सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सदानंद नायमपल्ली। अब सुनिए पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग हेमंत, मध्यलय गत झप ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
1: This is Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music. You're listening to Rag Puriya by Pandit Nityanand Haldipur on flute. Accompanying him on tabla was Pandit Sadanand Nayampally. Continuing the concert, now listen to Rag Hemant on flute by Pandit Nityanand Haldipur. Madhyalay Gat set to Jhap Taal, Drut Gat set to Teen Taal.

0: अभी आप पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बांसुरी पर बजाया राग हेमंत सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे ओंकार गुलवाड़ी। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी। ये रागम डीटीएच चैनल है। हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित नित्यानंद हल्दीपुर। अकंपनिंग हिम ऑन तबला वाज ओंकार गुलवाड़ी। This program was contributed by All India Radio Mumbai for Ragam 24/7 DTH. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जन सम्मोहनी.

0: और भाटियाली धुन में संतूर वादन। आज के कलाकार हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं कौशिक चट्टोपाध्याय। पंडित तरुण भट्टाचार्य अपने संतूर वादन का आरंभ राग जन सम्मोहनी से कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं राग जन सम्मोहनी में संतूर वादन। कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल। लिसन टू अ संतूर रिसाइटल इन राग जन सम्मोहिनी फॉलोड बाय भटियाली धुन। आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग पंडित तरुण भट्टाचार्य, एकम्पानिंग ऑन द तबला कौशिक चट्टोपाध्याय। नाउ लिसन टू अ संतूर रिसाइटल इन राग जन सम्मोहिनी फॉलोड बाय भटियाली धुन।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जन सम्मोहनी में संतूर वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित तरुण भट्टाचार्य। पंडित तरुण भट्टाचार्य अपने संतूर वादन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं एक भाटियाली धुन। तो आइए सुनते हैं संतूर पर ये भाटियाली धुन, कलाकार पंडित तरुण भट्टाचार्य।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं राग मल्हार पर चर्चा। आकाशवाणी लखनऊ के टेप संग्रहालय से प्राप्त कुछ दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स आपको सुनवा रहे हैं। राग मल्हार पर चर्चा कर रहे हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, जिनसे बातचीत कर रही हैं मीनू खरे।
2: मन भावन पावस को पाकर प्रकृति निहाल उठी, उसी की प्रतीक्षा तो वह करती थी ना, इतनी आतुरता से, इतनी विकलता से। पावस आया और उसने अपनी रिमझिम फुहार से सबको प्रफुल्लित किया, पुलकित हो उठी प्रकृति और उसकी वह पुलक मुखरित हुई पपीहे की पुकार में और झिंगुरों की झनकार में। प्रकृति का प्रभाव भला प्राणी पर कैसे न पड़ता, पावस के नशीले माहौल ने उसे भी प्रभावित किया और उसके कंठ से सहज ही फूट पड़ी रस भरी कजरी, भाव भरा विरह और मद भरा मल्हार। मल्हार के विभिन्न रूपों को स्वर के माध्यम से चित्रित करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में सुप्रसिद्ध गायक श्री गणेश प्रसाद मिश्र उपस्थित हैं। मिश्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आज आप मल्हार के विभिन्न रूपों में से किस रूप को सबसे पहले इस कार्यक्रम में चित्रित करने जा रहे हैं?
3: हम सर्वप्रथम मेघ मल्हार को लेंगे।

0: क्योंकि हमारे ग्रंथों में मेघ नाम जो है ये प्राचीन काल से ही चला रहा है, और जहाँ तक हमें ज्ञान है कि मेघ और मल्हार का दोनों का एक समन्वय है आपस में, और उसके बाद जितने मल्हार बने वो या तो ग्रंथ के ऊपर हैं या लोगों ने निर्माण किया। जैसे मियां मल्हार ये तानसेन जी ने बनाया, चंचल सस मल्हार एक हमारे बहुत अच्छे विद्वान हो गए हैं चंचल सस जी, जो उनके नाम पर है। सुर मल्हार भी ऐसे ही सुर जी के नाम पर, सूरदास जी के नाम पर है। रामदासी मल्हार भी एक बहुत अच्छे गायक थे, उनके नाम पर है। तो भिन्न भिन्न नामों के आधार पर मल्हारों का लोगों ने बनाया, जिन लोगों ने बनाया अपना नाम दे दिया। कुछ मल्हार ऐसे हुए जो कि बाद में एक दूसरे रागों को मिला करके मल्हार का पुट दिया गया, जैसे गौड़ मल्हार, उसमें गौड़ और मल्हार दोनों का समन्वय।
1: नट मल्हार भी उनमें से एक,
0: नट मल्हार भी उसमें से एक है, नट और मल्हार को मिला दिया। जयंत मल्हार एक है, उसमें जयजवंती को मल्हार को मिला दिया। इस तरीके से एक दूसरे रागों के साथ में मल्हार का को मिला करके मल्हार बना।
1: इसका अर्थ ये हुआ कि मेघ मल्हार हमारे आदि ग्रंथों में चित्रित मल्हारों में से एक है। तो आप थोड़ा सा इस राग के बारे में बताएं।
0: हमारा जो मल्हार है वो सारंग से बिल्कुल मिला जुला है। सारंग में ऋषभ का प्रयोग थोड़ा खड़ा लगता है, और मल्हार में जो लगता है वो ऋषभ घूमता हुआ लगता है और मध्यम पर जाकर प्रकाश डालता है। रे रे मे रे रे प, ये पूर्वांग का और नी मापा का प्रयोग उत्तरांग का, ये मल्हार को बतलाता है। तो मेघ मल्हार में गंधार धैवत वर्जित है और कोमल निषाद बाहुल्य है, जबकि शुद्ध निषाद का भी प्रयोग है लेकिन वो अल्प है।
1: तो आपसे अनुरोध है कि आप मेघ मल्हार से हमारे श्रोताओं को रस भी बोल करें।
0: जी हाँ, इसमें हम दो बंदिश आपको सुना रहे हैं, एक विलंबित और एक साधारा टाइप का है।

0: राग मेघ मलार के स्वरों में निबद्ध बादलों की धमक और बिजली के चमक का रस स्वादन अभी हमारे श्रोताओं ने किया। श्री गणेश प्रसाद मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग चंचल सस मल्हार। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दें।
1: ये हमारे कलाकार महान विद्वान चंचल सस जी ने अपना उपनाम रख करके इस मल्हार का निर्माण किया। जैसे चंचल सस मल्हार, सरजू जी का मल्हार, मीराबाई का मल्हार, इस तरीके से लोग उनमें अपना नाम रख करके उसमें मल्हार के प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के उन्होंने निर्माण की। चंचल सस मल्हार में जो है ये मेघ मल्हार का ही सभी स्वर है और बीच में कांधड़े अंग का गामा रेशा का प्रयोग होता है। ये दोनों को मिश्रित करके उन्होंने बनाया, क्योंकि काफी थार के जितने भी राग हैं, मल्हार प्रकार, सारंग प्रकार, कांधड़ा प्रकार, ये तीनों एक सगे संबंधी भाई हैं तीनों, और एक दूसरे में मिश्रित होकर के चलते हैं। जैसे मेघ मल्हार हमने सुनाया तो ये वृंदावनी सारंग से मिलता जुलता है। फर्क यह है कि इसके सब स्वर मेघ मल्हार के घुमावदार लगते हैं और सारंग के स्वर खड़े लगते हैं। दूसरे मध्यम बार बार सामने मल्हार में आता है, उसी तरीके से ये चंचल सस मल्हार में भी गंधार वक्र है और कोमल गंधार गमर इस तरीके का प्रयोग है और बीच में मध्यम जो है वो सामने आता है। इसके एक छोटी सी रचना हम सुना रहे हैं छोटे ख्याल का।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित गणेश प्रसाद मिश्र से राग मेघ मल्हार और राग चंचल सस मल्हार पर चर्चा, जिनसे बातचीत की थी मीनू खरे ने। आपके साथ सारंगी पर संगत की थी भगवान दास मिश्र ने और तबले पर अकबर हुसैन खान ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं पंडित S.N. रतनजनकर से राग सुरमल्हार।
1: सुरमल्हार लेंगे, इसमें औरोह में किंचित धैवत लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ सोरठ देश की छाया इस राग में आती है। यह इसकी विशेष पहचान है।

इस प्रकार कुछ धैवत इसके अवरोह में लगती है। मध्यमवादी है और मारे की मीर भी है, रिपसंगति है, जो मलार के सवांग हैं वो इसमें भी आते हैं, कुछ गमकों का प्रयोग भी होता है इसमें। यह राग कहते हैं सूरदास जी ने बनाया, इसी के लिए उसका नाम सुरमाल। पर ये सूरदास जी कौन से, कई सूरदास जी हो गए हैं, तो महाकवि सूरदास जी ही ये थे जिनका बनाया हुआ ये राग है, या कोई और सूरदास थे, ये ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव में निश्चित कहा नहीं जा सकता है किस सूरदास का बनाया हुआ ये राग है। अस्तु, अब इसके प्रथम कुछ स्वर विस्तार सरगम में और तत्पश्चात कुछ आलाप नेचे रीरी नाना इसमें करके, उसके बाद एक बड़ा ख्याल, उसका बड़ा मतलब विलंबित ख्याल, और दूसरा एक मध्यलय का ख्याल सुनाएंगे।

la la la. La la la.

अभी आप सुन रहे थे पंडित एस एन रतनजनकर से राग सूर मल्हार। रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत के अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में खयाल गायन. कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल. राग है हमीर. विलंबित खयाल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं जाग रही सगरी रतियां. तीन ताल में निबद्ध द्रुत खयाल के बोल हैं कैसे घर जाऊं लंगरवा. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया और वॉयलिन पर प्रवीण श्योलीकर. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग हमीर. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला एंड प्रवीण श्योलीकर ऑन द वॉयलिन.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं शाश्वती मंडल पॉल। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे शाश्वती मंडल पॉल से राग कौंसी कान्हड़ा। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं राजन के महाराजा। तीन ताल में निबद्ध द्रुत ख्याल के बोल हैं काहे करत मोसे बरजोरी। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल, यू विल लिसन राग कौंसी कान्हड़ा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में खयाल गायन। कलाकार थी शाश्वती मंडल पॉल। संगत कलाकार थे तबले पर सलीम अल्लाह वाले और वॉयलिन पर प्रवीण शिवलिकर। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय शाश्वती मंडल पॉल। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय सलीम अल्लाह वाले ऑन द तबला एंड प्रवीण शिवलिकर ऑन द वॉयलिन। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है इरा मुखर्जी का गाया राग भैरव. झपताल में निबद्ध ध्रुपद के बोल हैं गव आदि. पखावज पर आपकी संगति की है ऋषि शंकर उपाध्याय ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ ब्रिंग यू अ वोकल ध्रुपद रिसाइटल बाय इरा मुखर्जी. शी बिगिंस हर रिसाइटल विद राग भैरव. द ध्रुपद इज सेट टू झपताल एंड द वर्ड्स आर गव आदि. She is accompanied on the Pakhavaj by Rishi Shankar Upadhyay and on the Sarangi by Pandit Bharat Bhushan Goswami.

0: और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग तोड़ी। पखावज पर आपकी संगति की है ऋषि शंकर उपाध्याय ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू जस्ट हर्ड इरा मुखर्जी परफॉर्मिंग राग भैरव। शी वॉज अकम्पनीड ऑन द पखावज बाय ऋषि शंकर उपाध्याय एंड ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी। इरा मुखर्जी कंटिन्यूज हर ध्रुपद रिसाइटल विद द प्रेजेंटेशन इन राग तोड़ी।

0: अभी आप इरा मुखर्जी का गाया राग तोड़ी सुन रहे थे। पखावज पर आपकी संगति की थी ऋषि शंकर उपाध्याय ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू जस्ट हर्ड अ वोकल ध्रुपद रिसाइटल बाय इरा मुखर्जी इन राग तोड़ी। शी वॉज अकंपनीड ऑन द पखावज बाय ऋषि शंकर उपाध्याय एंड ऑन द सारंगी बाय पंडित भारत भूषण गोस्वामी। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए विदुषी मंजरी अलेगावकर के स्वर में संत भागाबाई की रचना। संगीतबद्ध किया है रविंद्र खासनीस ने।

अभी आप सुन रहे थे संत भागाबाई की रचना विदुषी मंजरी आलेगावकर के स्वर में, संगीतबद्ध किया था रविंद्र खासनीस ने। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है बबनराव नावड़ीकर के स्वर में, रचनाकार है संत नामदेव महाराज।

श्रोता हूँ, अभी आप सुन रहे थे संत नामदेव महाराज की भक्ति रचना बबन राम नावड़ीकर के स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम की अगली रचना समूह स्वर में।

आप सुन रहे थे समूह स्वर में ए रचना, श्रोताओं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए नारायण स्वामी की भक्ति रचना, जिसे गाया है सुधा मल्होत्रा ने, संगीत दिया है मधुकर गोळवलकर ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुधा मल्होत्रा के स्वर में नारायण स्वामी की भक्ति रचना। संगीतकार थे मधुकर गोळवलकर। अगली रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है चंद्रकांत का।

आप सुन रहे थे चंद्रकांत काले के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है माधुरी ओक के स्वर में।

यह भक्ति रचना आप सुन रहे थे माधुरी ओक के स्वर में। श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर। अब सुनिए एन के बेहरे की रचना समूह स्वर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आरती ठाकुर के स्वर में संत तुलसीदास की रचना। आइए अब सुनते हैं डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में संत एकनाथ महाराज की रचना। संगीतबद्ध किया है डीवी करंदीकर ने।